फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि।

फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि।

देखा तुझे जब से सनम हम तेरे हो चले चाहेंगे हमेशा तुझे ये भी जरा सोच ले।

फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वरांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि।